0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकनीक।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
5: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: एंड
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
0: एंड
7: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
8: इट्स 10 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
9: 11.9% 11.9%
10: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
11: शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 11.99%।
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
13: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
14: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
15: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
16: HBL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।

0: 8:15 AM.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
2: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
3: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
2: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
1: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: 11.9%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%।
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
10: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
11: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
12: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: 11.9%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.9%
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
13: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।

0: station for maximum music.
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
7: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं।

0: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
1: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और न ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
2: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320 2758 492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।

मैं तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। I know what you want, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: This program was brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
4: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
5: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी जानने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन न करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इत्तला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है। अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
1: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन, शौकत खानम कराची की तकलीफ।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: पेंशन कई को लेता जानी सब मिलेगा सब मिलेगा।
1: कर बे खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
4: This program is brought to you by
5: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम कराची की तकनीक।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: करोड़।
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

खत्म हो गया सबका मैच, क्योंकि अब आ

0: Welcome to FM 100.
1: And now,
2: change the mood.
3: Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
4: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।

0: 100.
1: I want you to love me.
2: A one, a two, a one, two, three, four.

आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: 5 p.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: 11.99%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है,
2: शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: सब मुड़ के देख रहे हैं।
5: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
7: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
8: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
7: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह तो?
7: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
8: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
7: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवर लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
9: शराइत ज़वाबित लागू है।
10: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
13: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
14: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
15: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
9: शराइत ज़वाबित लागू है।
16: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
17: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی،
8: خیر برکتیا بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں۔
1: ستے خیرا نے، ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے۔
8: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
1: اوے آہو، بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیتا، بی کھاد بھی چنگی والی،
8: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا۔
7: آہو، پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم، مچھی فارم، زرعی جانور لئی قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز۔ ہور معلومات لئی 1111-1111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو۔
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
17: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
18: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
19: سر سبز پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع iPhone 17 Pro Max، الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات۔
11: اینڈ
20: شوکت خانم کراچی کی تقریر۔
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
18: اینڈ
21: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا۔
14: اینڈ وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
11: اینڈ
3: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو تو ابھی اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔
11: اینڈ
22: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشیز ہیئر نیچرلی۔

0: खैर है बरकतिया, बड़ा मस्तो के गा रहे हैं।
1: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
0: HBL जरई बैंक की वजह तो?
1: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली।
0: ते हुण

0: चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
1: 11.99%।
4: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
5: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
4: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
5: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
4: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
5: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
6: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
7: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
6: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
7: HBL जरई बैंक की वजह तो?
6: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
7: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
6: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
0: शरायत ज़वाबत लागू है।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
7: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
6: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
7: HBL जरई बैंक की वजह से?
6: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
6: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
0: शराइत ज़वाबत लागू है।
12: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
1: 11.99%।
13: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
14: ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: at 6 p.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
1: 11.99%
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: सब मुड़ के देख रहे हैं।
6: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
7: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
6: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला। जैज 5G।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
12: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
13: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
14: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
15: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
14: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
15: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
14: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
16: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
17: शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
18: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिसपन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
19: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
20: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
21: 100 where it's all about more barn

0: Donnie, come with me.
1: This is FM 100.
2: Around the world.
3: आप सुन रहे हैं FM 100, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
5: अजान मगरिब पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तआवुन से.
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम. लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब का वक्त हो गया है.

0: everybody, come with me.
1: This is FM 100.
2: Around the world.
3: ग्यारह अशारिया नौ फीसद।
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराय तो जवाबित लागू है।
3: 11.99%
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
8: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
7: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
8: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
9: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
10: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
9: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
10: HBL जरई बैंक की वजह तो?
9: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
10: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
9: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
6: शरायत ज़वाबत लागू है।
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
8: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 seats का ऑप्शन है।
7: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
8: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
11: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G,
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और राबता करें 0300-555-0011 पर।
13: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
15: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
0: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
10: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
3: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
10: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
3: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
10: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
15: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
16: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
17: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
18: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
19: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشز ہیئر نیچرلی.
20: دس از یور میوزک.

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
3: 11.99% 11.99%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
7: सब मुड़ के देख रहे हैं।
8: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
7: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
8: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
10: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
11: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
12: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
13: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
12: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
13: HBL जरई बैंक की वजह तो?
12: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड़े रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
13: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
12: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले, तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवर कर्जे की सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 1111 1425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
11: शरायत ज़वाबत लागू है।
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
15: शौकत खानम कराची की तकदीर।
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800 1111 1555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
17: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
13: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
18: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
13: HBL जरई बैंक की वजह से?
18: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
13: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
12: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111-1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
19: शराइत जवाबत लागू है।
20: With melodious companion.

0: Straight from the studios of FM 100 to the transmission tower, through the airwaves into your stereo.
1: Don't you know how it works? Take it easy. Just listen.
2: This program was brought to you by
3: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max electric bike aur shandar qeemti inaamat
2: and
4: Shaukat Khanum Karachi ki takleef
5: aaj hi donate karne ke liye 0800 11555 par call kare ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit kare
2: and
6: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga
2: And
7: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
2: and
8: try all new vatika shampoo nourishes hair naturally
9: It's 7 pm This time check is brought to you by
10: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
11: 11.9%
12: ओ भाई क्या है ये 11.99%
13: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए
14: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है
15: शराइत और ज़वाबित लागू है
11: 11.99%
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
16: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
17: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड ग्रैंड बोल्ड एंड हार्ड टू मिस
16: बाहर से तो ग्रैंड है अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true seven-seater with three usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
16: अच्छी है पर मुझे तो eight-seater चाहिए थी.
17: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें eight seats का option है.
16: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया? सब क्यों देख रहे थे?
17: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
18: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
19: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
20: खुशी नाल नच्चे हर पत्ता टैणी टैणी
21: ओ खैर है बरकतिया बड़ा मस्त होके गा रहे हैं
20: ओ सते खैरा ने HBL ज़रई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है
21: HBL ज़रई बैंक की वजह तो
20: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसी वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी ले लेता बी खाद भी चंगी वाली
21: ते हुन मेनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा
20: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म ज़रई ते जनरल ले कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज होर मालूमात ले 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो
10: शराइत ते ज़वाबित लागू है मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
16: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
17: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड ग्रैंड बोल्ड एंड हार्ड टू मिस
16: बाहर से तो ग्रैंड है अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है
11: और स्पेस भी काफी है.
15: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
11: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
15: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
11: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
15: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
22: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
23: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी.
21: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं.
23: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है.
21: HBL जरई बैंक की वजह तो?
23: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
21: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा.
20: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज. होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो.
24: शरायत ज़वाबत लागू है.
25: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
26: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
27: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
28: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
21: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
28: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
21: HBL जरई बैंक की वजह से?
28: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
21: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
20: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
24: शराइत ज़वाबत लागू है.
29: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
20: HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
14: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है.

0: फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है। ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैस सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
2: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
4: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
3: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
4: HBL जरई बैंक की वजह तो?
3: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
4: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
3: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 1111 1425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
5: शरायत ज़वाबत लागू है।
6: One station. 100 FM.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
4: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
3: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
4: HBL जरई बैंक की वजह से?
3: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111 1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
5: शरायत ज़वाबत लागू है।
8: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
4: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
3: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
4: HBL जरई बैंक की वजह से?
3: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
3: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111 1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
5: शरायत ज़वाबत लागू है।
9: Broadcasting coast to coast, continent to continent, and around the world. This is the station number one for all the hits. FM 100.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL

0: Your location for maximum music.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त fund transfer, मुफ्त checkbook, मुफ्त online banking और बेहतरीन mobile app की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: 11.99%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है.
5: शराइत और ज़वाबित लागू है.
2: 11.99%.
6: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
7: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं. हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना ना भूलिएगा. अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0001 पर.
8: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी.
9: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं.
8: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है.
9: HBL जरई बैंक की वजह तो?
8: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
9: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा.
8: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवर लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज. होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो.
10: शराइत ज़वाबित लागू है.
11: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
12: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
13: शौकत खानम, कराची की तकलीफ.
14: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
15: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
16: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
15: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
17: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
18: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
15: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
18: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
15: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
18: और इस वजन की असल हकीकत को समझे.
15: आइए वेट से आगे का सोचें.
19: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
20: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
5: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی،
10: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
5: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
10: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
5: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
10: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
21: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
22: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
23: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
24: آپ سن رہے ہیں FM 100، آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن۔
25: السلام علیکم پاکستان۔
26: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
27: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहा मान लिया। तो आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। सूरह इब्राहिम

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
8: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्तो के गा रहे हैं।
7: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह तो?
7: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
8: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
7: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
9: शरायत ज़वाबत लागू है।
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
11: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
13: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह से?
7: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
9: शराइत ज़वाबत लागू है।

0: It's 8 p.m. The Shine Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
2: One station. 100 FM.
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
4: Broadcasting from the highest tower with the lights on so planes won't hit it.
5: FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.

0: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।

0: 1FM, your location for maximum music.
1: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।

0: This program was brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: And
3: purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. To abhi apni kareebi HPL branch chalo ya apply karo online. Ye offer mehdood muddat ke liye hai.
0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज वी फाइव शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और एसएमएस की शेयरिंग. अपनी पसंद की वी फाइव ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
5: One station.
6: 100 FM. फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: शौकत खानम. लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
8: शौकत खानम, कराची की तकनीक.
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
10: दिस इज योर म्यूजिक.